लाल कुल्हाड़ी, काली पहाड़ी, मोटा सेठ, लोहे का गेट, हो गई भोर, भागा चोर, नाचा मोर, मच गया शोर।

0: Your life, your music, your 89.1 FM, NTN Radio.
1: अरे तुमका का बताई भैया हमरा हाल का है।
2: बताए दे।
1: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

जो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी इधर भगे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान में जान।

अकेली करे अटकेली, उसकी बड़ी है धूम है ऐसी मन भावन, सब देखें उसको पलट पलट और घूम घूम। वो नगर नगर जाए टगर टगर और अंग अंग में ज्योति चमके जगर जगर, सुंदर बाला पलकों में लिए एक स्वप्न लोक, अधरों में लिए यौवन हाला। इठलाती है बल खाती है तन का चंदन, वो छलक झलक झलकाती है, वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है, वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है, वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है, वो

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

0: राणा जी खबर पक्को है, वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर।